सगल चिंत ठाकर स्यों मेरा रंग लावै। पढ़े रे सगल बेदना चूकै मन भेद एक खन्ना धीरज, मेरे करके पंचा कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत, तो एक अमृत नाम मेरे हृदय संचा। जे तेरे तीर्थ नाए ऐ बुंद मैल लाए, कर को ठाकर एक तिल ना मानै, कद पामू साध संग हर हर सदा आनंद, ज्ञान अंजन मेरा मन इशनानै।

सत सती राधे कंकर साचा नित दे चढ़ै सो आया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया कहन कह सब कोई केवड़े आखिया हूं मूर्ख नीच है जान समझा साखिया सच गुर की साखी अमृत पाखी तित मन मान्या मेरा कूच करे आवे बिखला दे शब्द सचे गुर मेरा आखण तोट ना भगत भंडारी परपुर रहया सोई नानक साच कहे बेनंती मन मांजै सच सोई तो ना श्री महला पहला

मन हर हर गोविंद गो घर हर गुण गोविंद जपाओ मन तन जीत शब्द लै लाओ गुरमत पंच।

नच राज सुख मिष्टऊ, नच भूख रस मिष्टऊ, नच मिष्टऊ सुख मायाऊ, मिष्टऊ साध संग हर नानक दास मिष्टऊ, प्रभु दर्शनऊ लगड़ा सो नेहो, मन मजा हूरत आओ बिदड़ो।

पौड़ी गम शैली बिनाओ पानी है क्यों जीवन पावे बूंद भी होना चातर को क्यों कर त्रिपतावे।

देहो दर्श मन चाओ लह जाए बसूरी ऐ होए पवित्र शरीर चरना थूरी ऐ पार ब्रह्म गुरुदेव सदा हजूरी ऐ श्लोक।

संत उधर दयाल यासनु गोपाल कीर्तन निर्मल संत संगीण गोट नानक परमेश्वर हाऊ।

आओ कूट यगा गए नास हरिक जाए आओ निर्मल भय शरीर जन तूरी नाए आओ मन तन भय संतोख पूर्ण प्रभ पाए आओ तरी कुटुंब संग लूगा कुल सुवाए आस लूगा गुरु गोविंद गोपाल गुर गुरु पूर्ण नारायण हाँ गुरु सुदयाल समदत्त गुर गुरु नानक पातित उधारण हाँ।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं चौपाई पुनरा शिशका काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा।

कृपा दृष्ट तन जाहिन हर हो, ताके ताप तनिक मोह हर हो। हृद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वे सके।

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुभराता। किलमिक सगल दे को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता। श्री अस्तु जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला।

ताच सेवत सनाई बावा सच्चे पाचा तेरी सच्ची नाई। श्लोक महला पहला छत्ती पाप कर सत कमाहे गुर दीख्या कर देवन जाहे। स्त्री

पौड़ी हर मंदर सोई आखी है जितो हर जाता मानस दे गुरबचनी पाया सब आत्म राम पछाता बार मूल ना खोजिए कर मैं बदाता

पौड़ी काया हंस तुर बेल करते लिख पाया सब मैं गुप्त वरतदा गुरमुख प्रगटाया गुण गावे गुण उचरे गुण मै समाया सच्ची बाणी सच सच मेल मलाया सब किश आपे आप है आपे दे वड्याई वाहो सच्चे पाचा तेरी सच्ची नाई। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਤਨਾ ਪਰਖਣ ਜਾਏ ਰਤਨਾ

पौड़ी नौ दरवाजे काया कोट है दसवें गुप्त रखीजे बजर कपाट ना खुलनी गुर शब्द खलीजे अनहद वाजे सुन वाजदे गुर शब्द सुनीजे तित

पौड़ी अंदर गढ़ कोट है शब्द संतर देसा आपे दाड़ी लाइन सब मैं परवेसा आपे शिष्ट साजियन आप गुप्त रखेसा गुर सेवा ते जाड़िया सच प्रकटिए सा सब किछ सचो सच है गुर सोजी पाई वाह वाह सचे पात तेरी सच्ची नाई।

गंडे माँ पाग के चले नाही कड़ी मोत केशा हंडे सच पुराला होवे नाही सीता कदे ना पाटे नानक साहेब सचो सचा तिसर जापी जापे महला पहला सच की काती सच सब सार कारत तिसकी अपर पार छबदे जान सरखाई लाए गुण की थे के विच समाए जे सदा कुठा होवे सेख लोहू लाभन खथा वेख होए हलाल लगे हक जाए नानक दर दार समाए महला पहला कमर कटारा बंकड़ा बंके का असवार गर्बना चाइंदे छचे जिन हार खर्च तन्ने तन पल्ले भगत छोए न गुरगाम दे गुरमत अचले रतन बचार मन वस्या गुर के शब्द पल्ले आपे मेल मलायदा आपे देव ड्याई वावा सच्चे पाचा तेरी सच्ची नाई श्लोक महला तीजा

पौड़ी त्येग जीवन संसार सच्चे नाम बिनो प्रभ दाता दातार निचल एहो तन सास सास राधे निर्मस होई जन अंतर जामी गम रसना एक पन रब

खाना सच कमाने सचो पाइए कूड़े कूड़ा माना नानक तिन को सतगुर मिलया जिन्ना तोरे पिया परवाना। महला पहला साहब मेरा उजला जे को चित करे

संकट जोन गर्भ नायो। तत विचार यह मथुरा जगतारण को अवतार बनायो। जप्यो

कलस मोदर पैरू परगट हर नाम उदारन बसै संत जिसर दै दुख दारिद्र निवारन निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जान्यो पयो तह सम सर सोई तारन गगन नव खंड मैं जोत सब रूपी रिहो पर पन मथुरा कश भेद नहीं गुर अर्जन प्रताख हर तारन गगन नव खंड मैं जोत सब रूपी रिहो पर पन मथुरा

0: वंश जगत जस संचर्यो सो कवन कहे श्री गुरमोयो।
1: वाहिगुरु जी देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो हार सिंहासन दियो श्री गुरु तै बिठायो रहस कियो।

गुरु रामदास जिन पायो छतर सिंहासन पीर्थ मी गुरु अर्जुन को दे आयो काटे सो पाप तिन न रोके गुरु रामदास जिन पायो छतर सिंहासन पीर्थ मी गुरु अर्जुन को दे आयो।

0: बिजन पकासा सकल काल का किया तमाशा।
1: यवन काल जोगी शिव की हो वेदराज विमो ज्योति हो।
0: यवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा।
1: यवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। आदंते के अवतार सुई गुरु समझो हमारा।
0: नमस्कार तिसिल को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी।
1: शिव को गौ शिव गुण सुक्ति हो सतरंग को बल मोहबत की हो।
0: कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पहचानत।
1: चीती ते कंच स्थूला सब के पद इसका फूला।
0: संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी।
1: एक एक की पे पहचाने कर कर के पर की जाने।
0: जब उठ कर करा करता

0: सिमरत कैठा
1: सगरी सृष्टि काए चंबवाज गाज रूप सियंब
0: अब रचा मेरी तुम करो सिखो बार सिख संगरो
1: दुष जेते पाता सुख मलेश करो गाता
0: जयस्तु जय सर्दी परे तिनके

0: रचन रचिया सो हर मन वसाया,
1: प्रसादी हर मन वसिया पूरब लिखिया पाया।
0: कहे नानक यो शरीर परवान हुआ जिन सतगुरु से उचित लाया।
1: नेत्रों मेरे हो हर तुम में जो तरी हर बिनवर न देखो कोई,
0: हर बिनवर न देखो कोई नदरी हर।

0: एक
1: तो प्रसाद चौपाई प्रणव आद एक अंकारा जल थल मैयल कियो पसारा
0: आद पर कविगत अविनाशी लोक चतुर्दश ज्योत प्रकाशी
1: हस्त कीट के बीच समान राव रंग जय एक सर जानी
0: अद्वै लख पर कविगामी संकट कट के अंतर जामी
1: अच्छे अनपेखा राव रंग जय रूप न रेखा
0: भरत जैन सबूते न्यारा आद पर कदवै अविकारा
1: भरत जैन जय जात न पाता सत्र मित्र जय तात न माता
0: सब दे दूर संबंधे नेरा जल थल मैयल जाए बसेरा
1: अनद रूप अनाहत बानी चरण सरन जय बस्त पवानी
0: ब्रह्मा विजनांत नहीं बायो नेत नेत मुख चार बतायो
1: इंद्र पिंद्र बनाए ब्रह्मा रुद्र पाए खपाए
0: लोग चतुर्दस के दिल चायो बोरा पी बीच मलायो
1: देव फनिंद पारा गंधर्व जच रचे सुचारा
0: पूत पवेक भगवान कहानी गट गट के पट पट की जानी
1: जे जात न पाता एक रंग का हू नहीं रहता
0: सर्व ज्योत के बीच समाना सबु सर्व ठौर पहचाना
1: तनकाल स्वरूप अलख परख अवगत अवधूता।

ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याय कै हो हरिया पाई बाण त्रिण त्रिपवन मौलिया अमृत फल पाई।

0: पाए, काज तुम्हारे देह निमाए रहाओ।
1: सबके ऊंचा का दरबार, सगल भगत जाका नाम आधार।
0: आपद पूरन तनी जाकी शोभा कट कट बने,
1: जिस मृत्यु डेरा कहे, जिस सिमरत जब किछ ना कहे।
0: सिमरत होत सूखे हरे, जिस सिमरत डूबत।

ऐसा अंतर दीठा जन चाख्या पूरा पद होए नान त्यापी तन सुख होए प्रभाती मैला पहला अंतर देख सब मन मानिया अवनारा गनहारा ऐनसिया दे संभाले तिसी की सरकारा मेरा पवरा करो अत रूड़ो दीन दयाल पीत मनमोहन अतसला संगूड़ो रहाओ ऊपर कूप गगर पनहारी अमृत पीवन हारा जिसकी रचना शुभ न जाने गुरमुख ज्ञान विचारा परसीकन रस कमल बिगासे संस्कार सूर समाया काल बलंस मनसा मन मारी गुर प्रसाद प्रपाया आत्रसा रोग चलूले राती दूजा रंग न कोई नानक संसाए राती रव रहा प्रभ सोई पर भाती महला पहला बाल में रावल खप जावे चौसे में सन्यासी जोगी कापड़िया सिरखू थे बिन सबदे गलफासी शब्द रते पूरे बैरागी ओ हठ हस्त में भिख्या जाची एक पै लिव लागी रहाओ ब्राह्मण वार परे कर क्रिया करनी कर्म कराए बिन बूझे के सूझे नए गुरमुख विशर दुख मन मुख विशर दुख पाए सदमिले सो सुचाचारी साची दर गए माने अंध नाम रत्न लिव लागे जो सा समाने सगले कर्म धन सत संयम जब तक तीर्थ शब्द वसे ना सद मिले मिलाया दुख प्राश्त काल नसे प्रभाती मेला पहला संता की एन साध जन संगत हर कीर्त तर तारे कह करे बपरा जम डर पे गुरमुख दे मुरारी जल जाओ जीव ना बिना ह जप जप जप जप माले गुरमुख आवे साध मना रहाओ गुरु उपदेश सात सुख जा को कहत उपमा कहिए लाल जुए रतन पदार्थ खोज गुरमुख लहिए चीने ज्ञान त्या तन साचो ए सदलाव लावे निर्लभ निरहारने केवल निरपोताड़ी लावे सह सत प्रजल निर्मल उल्टी नाव तरावे वार जाटो ठाकर हावे गुरमुख सहज समावे सो गिरी सो दास उदासी जिन गुरमुख आप पछाणिया नानक अवनी दूजा साध सद मन मानिया राग पर भाती महलाती जा चौ परे एक ओंकार सदगुर प्रसार गुरमुख विरले कोई बूझे सरदे रहा समाये नारते सचक पावे साच रहे लिव लाए हारा नाम जप मन पाए हारा नाम जप जन पाए गुर प्रसाद मन अस्त रहोए आंदन हर्ष रहा अगाई रहाओ आंदन पद करे दिन राते इस युग में लाहा पाए सदाजन निर्मल मैल न लागे सच नाम चित लाए सुख सिंगार सदगुरु दिखाया ना वडी वड्याई अखोट भंडार परे कदे तोट न आवे सदा रहे सदा हर सेव पाई आपे करता जैसों देवे तसो से मन आए नानक नाम ते आए सदा तू सदगुरु दिया दिखाई प्रभाती मैं लाती जा निर्गुणारे को बसले स्वामी निर्गुणे को बसले स्वामी आपे लियो मलाई तू बेअंत अंत न पाया सबदे हृदयोज बजाई हार जो तर विटू बल जाई तन मन अर्पे तुर आगे राखो सदा रहो शरणाई रहाओ आपे पण विच सदा रख स्वामी हर नामो देव डे आई पूरे गोते पाणा जापे अंदर सहज समाई तेरे पाणे भगत जेत दपावे आपे बस मलाई तेरे पाणे सासुक पाया गुर तिसना अगन बुझाई जो तू करे सो होवे करते और न करना जाई नानक नावे जेवड़ और नाता पूरे गुरु ते पाई प्रभाती महलाती जा गुरमुख खालस लाहया ते

है विखिया विखो जो विसार प्रभु को जसिए थार नानक जन कहे पुकार यौसुर बेहत है जय जावंती महला नमा।

अशरं दुर्लभ देहि उद्धरन्तो साध शरण नानक हर हर हर हर हर हरि जपन्तो।

अलकहं नित्यविताओं अनित्य चेतयाओं चित्तं अनित्यासा भवत् प्रकारं नित्यं हितं अहं बन्धौ परममाया मलिनौ विकारं फ्रांत जो न अनेक जठरागण नैसमिदा तुमलीन बुद्धयाँ हे गोविंद कर्तमया नानक पातति उदाहरण साध संग महा

भक्तवचलकरणामयि कटकटवसन्तौ वासुदेवः पारब्रह्म परमेश्वरः जाचन्त नानक गिरिपालपुरसादौ नह विसरन्तौ नारायणः।

न च मित्रो न च येष्ठ न च वादव न च मात पिता तो लज्जया अकर्णो क्रोध खातौ खातौ असाजो साज सुमज्जयाहे ताहे सर्ण स्वामी विज्ञापत नानक हर नर हऊ ही जन्म मर मूलौ अकारो पपात्मा मित्रौ तजंत शत्रण दृढ़ते अनकुमाया विशदीर्ण

सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म हस्तकाया रखिया परमेश्वर आत्म रखिया गोपाल स्वामी धन चरण रखिया जगदीश रहा सर्व रखिया।

करुणामये हि जिहि रसगे मातर प्रयात सतहत परम वात अवर्तीथा शुद्ध शरण गो।

हर लभध मित्र सुमित्रौ विदारण करे न चित्तौ जाकाय स्थिर तोले मित्तौ सोई नानक सखा जी संग कितौ।

पूर्वण शुभ वाचन रामण गावण साध संगे नोतृण संसार सागरों नानक पुनरप जन्म न लभ्यते।

0: 딱 넣어 드려.
1: 내히데 그스런가 아직깔 따제 자홍에 영건치리 뻐장가 कबीर लूटना है तो लूट ले राम नाम है लूट फिर पीछे पछताओगे प्राण जाएंगे छूट कबीर ऐसा कोई ना जन्म्यो जन्मे कर लावे आग पांचो लड़के चार के रहे राम निवलाग कोहे लड़का बेची लड़की बेचे कोई साजा करे कबीर जो हर संग बन करे कबीर चेतावनी मत सह सारे जाए

मत कहो मन ने ते क्या डर पड़ा जब हाथ से दौरा लीना कबीर रस को गांडो चूसिए गुण को मरिए रोए अवगने आरे मान से पलो ना कहिए कोए कबीर गागर जल परी आज कल जह फूटा।

नाम ले आए। कबीर सात समुंद मत करो कलम करो बनराए। वसुदा का तजो करो हर जस लिखना जाए। कबीर जात जलाहा क्या करे हृदय बसे गोपालो। कबीर रमैया कंठ मिल चूके सरबज जालो। कबीर ऐसा को नहीं मंदिर दे जराए। पांचों लड़के मार के रहे राम सिंह लाए।